पार्टीबास एफएम समय सूचक यो पार्टीबास एफएम को समय हो अहिले साँझ 6 बज्यो।

0: 말해 뭐지 뭐지 뭐지 내가 어디야니? 자자자자자자
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप

पाखरीबास एफएम समय सूचक यो पाखरीबास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बज्यो।

सुपर खाएने सब खाएने रक्सी भने रक्सी निचाके रक्सी सबै होटल खाने चुरु चुरुमा जा।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले रात को 9 बजे